तू मंदिर सी, तू रब दी सुहागण सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं, सुनो किमें गले हैं। कहते हैं

संत बाबा अतर सिंह महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं मजदूरां वाले कपड़े पा ले एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन कहन लगा जी असीं मजदूरी करना चाहते हां करो अठ घंटे काम करना पड़ेगा ठीक है करांगे मजदूरी तय हो गई

ने समस्ति निधाने नमस्पंग निर्नाथे नमस्पंग प्रमाथे नमस्पंग अगंजे नमस्पंग अभंजे नमस्पंग अकाले नमस्पंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो

आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंगनातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व घायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अन भेख

चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे।

नमो नर्कना शेषदेवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अघास रूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी।

अंगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रभंज अनघन प्रणाम मुन मनसलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशज अंग आसन भंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपहंड जल थल महंत दिस विस व्यंत अनुभव अनास तिर

अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अजवा कृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वम्बर है, करणालय है, निरपनायक है, सर्वपायक है, भवभंजन है।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी दे पावन पवित्र वचन, जो कि बहुत ही अगम्य रबी विचार है, सानू महाराज जी के शब्द द्वारा सुन का एक मौका प्राप्त होया है। जो आप जी की सेवा च गुरु महाराज जी का महान सिक्ख्या भरिया उपदेश दास ने अर्ज करना है, उसके वास्ते मेरी प्रबंधक सज्जना नूं पहले ही बेनती है कि जो पिछों बच्चों की आवाज आती है उसका सही इंतजाम करन, ताकि उस थॉट प्रोसैस के विच जुड़ी हुई संगत नूं किसी भी किस्म की कोई जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो। आप जी ने इस शब्द की जो थीमैटिक लाइन है वो बार बार सुनी है, मन की मत त्यागो हर जन, मन की मत त्यागो हर जन, मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठिन। सतगुरु गुरु रामदास साहिब जी महाराज सानू साडे जीवन दे विच्चों कोई अजेही चीज छोड़ देण नूं आख रहे हन, जो कि सानू सब तो ज्यादा प्यारी है। कोई अजेही चीज छोड़न नूं आख रहे हन जो कि साडी जिंदगी दे विच तमाम फिक्कापन लैके आंदी है, दुख लैके आंदी है, सारी जिंदगी दे विच जो जहर घोलदी है उस नूं छोड़न नूं कह रहे हैं। पर जिस वस्तु नूं महाराज जी छोड़न नूं कह रहे हैं उही वस्तु है जो सिख बहुत मुश्किल दे नाल छोड़ सकता है, उही वस्तु।

जिस चीज नु महाराज कह रहे हैं ना छोड़ दो, वही साडे लिए छोड़नी सब तो ज्यादा कठिन। गुरुदेव जी आप भी इस गल नु जानते हैं, इस करके वो कहते हैं पहला सुजेशन है कि मन की मत त्यागो हर जन, पर नाल ही नाल क्योंकि वो जानते हैं वो कहते हैं दिस इज नॉट वेरी इजी थिंग टू डू, दिस इज नॉट सो सिंपल थिंग टू डू, यह बात कठिनी, ये बात बहुत कठिन है। क्योंकि अगर असी अपने मन की मत ही छड़ दिती तो फिर साढ़े पास रह गया कुछ भी ना रह गया। हरेक इंसान की अपनी मत, हरेक इंसान की अपनी मत है, और क्योंकि हरेक की मत अलग अलग होण करके हरेक इंसान फिर अलग अलग बोलता है, हरेक इंसान अलग अलग सोचता है, हरेक इंसान अलग अलग कर्म करता है, जिस करके कई दफा साडे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो जाते हैं। तो मत जो अलग अलग अगर साड़ी सबना दी मत एक हो जाए तो फिर साडे कोई भी डिफरेंसेस ना रह जान, कोई भी प्रॉब्लम्स ना रह जान। असी गिनती च अनेक हुंदे होए भी असी एक होइए अगर साड़ी मत एक हो जाए। तो गुरु महाराज देखते हैं कि साडे जीवन दे विच्चों सब तो ज्यादा जो जरूरी चीज है त्यागनी छोड़नी डिस्कार्ड करनी जिसकी जरूरत है वो है साड़ी अपनी मत। भला कोई अपनी मत नु भी छोड़ता है? भला कोई अपनी मत नु छोड़न नु तैयार है? किसे इशू ते कोई धर्म दा होवे मर्यादा दा होवे कोई बंदा अपनी मत छोड़न नु तैयार नहीं। हर इंसान ये आखदा कि जो मैं कह रहा वो ठीक है, ठीक होवे या ना होवे वो जुदी गल है, पर एवरीबॉडी इज सो मच कन्विंस्ड कि जो मैं कह रहा जो मैं सोच रहा हां वो बिल्कुल ठीक। वो बिल्कुल सही, कोई भी अपनी मत छोड़न नू तैयार नहीं। जदों दास ने ना पंक्तियां नू पढ़िया सोचिया तो हैरान होया कि महाराज जी कहिंदे हन सियाणप छड़ दिओ मत छड़ दिओ। मैं हैरान होया कि गुरु बाबा जी आम ते सी ये सुनिया है कि भी सियाणप धारण करो, सियाणप इकट्ठी करो, मत इकट्ठी करो। कई लोग तो यह सोचते हैं कि मत जिथों भी मिल जाए उथों ही ले लो, भावे उसको मत ही मिलती हो। कई दफा कई लोग कहेंगे वी आर वेरी ओपन टू एवरीथिंग, हाउ डेंजरस थिंग इज दैट। ध्यान ना थोड़ा सोच के देखो, इफ यू बिकम ओपन फॉर एवरीथिंग मतलब मत ले भी ओपन हो को मत ले भी ओपन। गुरु महाराज जी आखदे हन मन की मत त्यागो हर जन, यह बात कठिन। गुरु बाबा जी दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दास ने जो पढ़िया है किते भी पैसा त्यागना उन्होंने कठिन नहीं लिखिया, किते नहीं लिखिया कि पैसा त्यागना कठिन। त्यागया जा सकता है, दान किया जा सकता है, शरीर त्यागना भी कठिन नहीं है, यह भी किया जा सकता है।
और अपनी मत त्यागनी जड़ी है वो महाराज जी ने अपने लफ्जां च अपने शब्दां च अपने हत्थां नाल आप लिखे है कि ये त्यागनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मत त्याग दिती तो समझ लो एक किस्म की अपनी होंद ही त्याग दिती। मत त्यागन का भाव कि मैं कुछ नहीं पता, मेरी कोई राय नहीं, मेरी कोई ओपीनियन नहीं, मेरी कोई व्यू पॉइंट नहीं, मेरा कोई भी नजरिया नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता। मत त्यागन का मतलब कि मेरे पास मत है ही नहीं। आओ थोड़े जे प्रमाण सुनो जिथे गुरु महाराज जी आखते हैं कि हरेक इंसान दे पास आपो अपनी मत है और आपो अपनी मत दे विच वे बोली जाता है। उसने कदे ए अपनी जिंदगी च क्वेश्चन नहीं किया, सवाल नहीं किया भी मेरे पास मत है भी या नहीं। आओ असि सारे जितने बैठे हैं, मैं आप सबना में सवाल रेज करता हूं कि असी कदे अपने आप ते ये सवाल किया कि की मेरे पास मत है भी या नहीं। ये ऑटोमैटिकली अंडरस्टूड थिंग है कि मेरे पास मत है और इनफ है, कोई काट नहीं है उसकी। ये गल दुरुस्त है या नहीं सत्संगत? असी कदे भी अपने आप ते कदे डाउट भी नहीं किया कि जो मेरी मत है, जो मेरी मत है वह सही भी है या नहीं। मूर्ख तो मूर्ख इंसान नू भी एक कदे शक नहीं हुंदी अपने आप उते कि मेरे पास मत नहीं है। उस नाल भी गल करके देख लो, उस पास भी काफी भंडारा मत दा होएगा। इस उते गुरु महाराज जी की जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि सिखी शुरू कितों हुंदी है, सिखी आरंभ हुंदी है सिखी सिख्या गुरु विचार, गुरु की विचार तो, गुरु की मत तो सिखी आरंभ हुंदी है। ते अपनी मत ते सिखी जाके खत्म हो जाती है। जिथे अपनी मत है उथे सिखी खत्म हो जाती है, गुरु सिख का रिश्ता खत्म हो जाता है। जिथे मत गुरु वालों आती है उथे सिख का जन्म होता है। सो इस करके अज का पहला कीर्तन जो जो फंडामेंटल चीज है, जो बुनियादी चीज है, वो गुरु साहिबान की मत है, उस उत्ते कीर्तन आरंभ किया जा रहा है। फिर अगां चल के असि अगले कीर्तन सुनांगे कि मत की है, जिस चीज नूं असि मत समझते हाँ वह की चीज है। तो यह विचार ज्यो ज्यो कीर्तन अगां तो अगां वधनगे, गहरिया विचार जो महाराज की बख्शिश के नाल असि करते जावांगे। गुरु साहिबान की ऑब्जरवेशन यह है, कहते हैं सबको बोले अपन पाणे। समझण वाली गल है, सबको बोले अपन पाणे। हर बंदा ओही ओही बोलता है जो उसनू पाउंदा है, जो उसनू अच्छा लगता है।

तो रोजाना एक छोटी जी डायरी बना लेनी, 10 दिन जितने भी कीर्तन होंगे, 10 कीर्तनों के विच हर रोजाना एक नवा मैसेज जो है, सुनेहा जो है, लेसन जो है, वह सानू मिलिया करेगा, उसनू भुल ना जाना। अज ए दिल दे विच इस गल नू उतार के जाओ कि गुरु महाराज जी ये आखते हैं अपने मन की मत नू त्याग दो, बिल्कुल त्याग दो, खाली हो जाओ। हुण सुते गुरबाणी दे

कबीर साहब जी की बाणी भी एक पंक्ति बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि उन्होंने बहुत अजीब गल आखी, बड़ी अजीब गल आखी। कबीर साहब कहते हैं

राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। इफ यू आर द माउंटेन लॉर्ड देन आई एम द पीकॉक। जो तुम चंद तो हम पहे हैं चकोरा। इफ यू आर द मून देन आई एम द पार्ट्रिज इन लव विद इट। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। तुम स्यों तोर कवन स्यों जोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। फॉर इफ आई वर टू ब्रेक विद यू विद होम वुड आई देन जॉइन। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती। इफ यू आर द लैम्प देन आई एम द विक। इफ यू आर द सेक्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज देन आई एम द पिलग्रिम। साची प्रीत हम तुम से जोरी। तुम से अवर संग तोरी। आई एम जॉइंड इन ट्रू लव विद यू ओ लॉर्ड। आई एम जॉइंड विद यू and I have broken with all others. Jeh jeh jaun tahan teri seva. Tum so thakur aur na deva. Wherever I go, there I serve you. There is no other Lord Master than you, O Divine Lord. Tumre bhajan kate jam phansa. Bhagat het gaavai ravidasa. Meditating, vibrating upon you. The noose of death is cut away. To attain devotional worship, Ravidas sings to you, O Master. Madhve, tum na toro, to hum nahi tore. Tum syon tor, kavan syon jore. Raag sorat, taal, choti tin taal, 16 beats.

सेवा प्रवान करनी धन का नहीं तो जो भी आपकी दुनिया की कम्बा का जन्म जा आपकी सूरत में किस वेले कर आपकी गुरु दरबार में कुछ हाजरी भरिए अते हम आप इन अमृत ने कीर्तन रागा दे विच गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा अनुसार गुरु अर्जन साहिब की मर्यादा अनुसार सरवण कीता है स्वतंत्रता दे आओ अंत दे विच सर्वत माई भाई जितने गुरु चरणा च बैठे हो छोरिया की अरदास बेनती दो दिन करनी है सतगुरु दात्या की हे काल पुरख सर्व शक्तिमान परम पिता परमेश्वर कृपा करो साडे छोरिया विच अपने पवित्र नाम की खैर पाओ आओ जपो सारे लवाओ हाजिया कोई रिश्ता खाली ना जाए।

दुई गुर साजे करासन रिठो चाओ, दाता करताप तू तुस देवे करे पसाओ, तू जानो ही सबसे दिल ऐसे जिंद को कार्यासन रिठो जाओ।

अवस्था है एक तू तू तू। सिख ने अंत विच तू विच जुड़ गया क्योंकि तू प्राप्ति है मैं विछोड़ा है। तू वाहिगुरु की प्राप्ति है, तू तू करता तू तू करन वाला उस तू विच जुड़ जाता है, मैं विच बोलन वाला विछड़ जाता है, मैं विच विछड़ गया। ये होमे का जिहड़ा कर्म है इसनू वाहिगुरु तो विछोड़ देंदा है, फिर मिलदा किस तरह है उसकी रहमत नाल मिल जाता है। रहमत द्वारा की मिलना है, अपना आप बजा के मुका के पातशाह मैं तेरा तेरा तेरा। नदी पहाड़ा तू चलती है, जंगलों विचो लंघती, थलों विचो लंघती, किथे चली गई समुंदर कोल चली गई, अगों समुंदर भी नदी नू लैण वास्ते आ। जे नदी चलती है ना समुंदर वाली, अब प्यारी सात संगत चौबी घंटिया विच एक वेरी समुंदर दे अंदर भी ज्वार भाटा आउंदा है, तो उस वेले समुंदर जिधरों नदी दा पानी आउंदा है उधर समुंदर तुर पैंदा है। किस वास्ते? नदी नू लैण वास्ते। बाबा जी बचन करदे सन जे सिख गुरु वल तुरदा है फिर गुरु दे सिख दे प्यार नू तक के गुरु सिख वल तुर पैंदा है। आप बां फड़ के सच्ची दरगाह विच लियाउंदा है, ते तां गुरु नाल जुड़ना बड़ा कठिन है। माया कई रूप धार के रुकावटां पाउंदी है। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਲੱਖ ਬਲਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਧਰੋਂ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਧਰ ਚਲੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ, मैं तेनू मिलन वास्ते आया। तो बाबा जी बचन करदे सन फिर ए रिश्तेदार दोस्त प्रेरदा है अज गुरुद्वारे ना जा, तो बाबा जी बचन करदे सन रिश्तेदार नहीं, ए कोई दोस्त नहीं, ए दोस्त दे रूप विच माया है। आखो श्री माया कोई पौंडा नू नहीं कहिंदी, ना कोई स्त्री दा नाम माया, सोने चांदी दा नाम बाबा जी कहिंदे सन माया नहीं है। माया केड़ी चीज है? माया पुरावे दा नाम। धन गुरु अमरदास पातशाह जी फरमांदे हन कि ए माया केड़ी चीज माया है? ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा। ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਸਮਝਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਨ ਪੁਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਵੀ
भी तेनू लैण वास्ते आया। एक बार सतगुरु मंत्र सिमरण मात्र जे एक वेरी तो जपिया है वाहिगुरु, तो भाई साहब जी लिखते ओ वाहिगुरु पता नहीं तेनू किन्ने वेरी याद कर दे। तो याद करिए, विचार करिए, जिस नूं वाहिगुरु याद कर लेगा वह नरकां नूं नहीं जाएगा, खुश नहीं होगा, तेनू वाहिगुरु नहीं याद। एक बार सतगुरु मंत्र सिमरण मात्र, मंत्र केड़ा है गुरमंत्र, सिमरन ताहे बारंबार गुरहेद, गुरमंत्र वाहिगुरु शब्द है। बाबा जी वचन करते सन वाहिगुरु शब्द गुरमंत्र ए दरगाही टिकट है, इंडिया जाना हो टिकट लेनी पैंदी। तो बाबा जी बचन कर दे सन एक दिन एक वसदी रसदी दुनिया नू छड़ के, धियां पुत्तां नू छड़ के किसे होर थां ते जाना है, उथों वास्ते केड़ा टिकट है, ए वाहिगुरु शब्द दरगाही टिकट, इनू भी संभाल के रख, किधरे जे टिकट ना होगा तो अगे जाना ही मुश्किल है। तो एक बार सतगुरु मंत्र सिमरण मात्र ताहे बारंबार, ताहे सिमरण बारंबार गुर हेत है, सिमरण ताहे बारंबार गुर हेत है। भाई साहब जी लिखते श्रद्धा ते भावना नाल गुरु अगे जो भेटा रखी है ओदा फल पावनी भगत पाए, कौडी अगर पाग रखे ताहे गुर सर्व निधान दान देत है, सदगुर दया निध महिमा अगाध बोध, नमो नमो नमो नमो नेत नेत नेत। ए है गुरु तो सिख ने तेरा विच नदी तुर पैंदी है, समुंदर अगे तुर लैण वास्ते आ जाने, पुछदा है कौन है, नदी कहंदी है मैं तेरी हां, दूरों आई है। फिर समुंदर उस नदी नूं अपने विच लै लैंदा है, फिर ओ नदी नदी नहीं रहिंदी, समुंदर ही बन जांदी है। आखो श्री और किस वेले जिस वेले कहंदी है मैं तेरी, तो बाबा जी वचन करदे सन सिख ने तेरा विच माया मिल गई है पातशाह तेरी कृपा, मान वड्याई मिले तेरी कृपा, तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूं, जब आपा परता मिट गया जप देखा तू। बाबा आनंद सिंह जी महाराज हर समय तू विच जुड़े रहे। बाबा जी समाधि लगा के बैठे, नेत्र खोले, सेवादार नूं पुछया भई घुग्गी की कहिंदी है, बाबा जी मैनू तां पता नहीं की कहिंदी है। बाबा जी कहण लगे घुग्गी कहिंदी है इको तू इको तू इको तू, छोटा जिहा जाना घुग्गी दी आवाज चो ही तू बाबा जी ने प्रगट, अंदर तू जो वसे। ਕਰੋਲ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਉਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੀਂਡਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ तेरा तू परे संसार ही है नहीं, आखो सी। तो सिख ने हर समय तू ही जो सत साच श्री निवास आद पुरख सदत, तो तू दी प्राप्ति वास

राग गौड़ी दखनी विच ऋषभ धैवत कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच गंधार धैवत सुर वर्जित हैं। इस दी जाति औडव संपूर्ण वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा सवेर दा पहला पैर है। इस राग विच नाम मिले चले मैं नाल शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह करीर।

कूड़ पर जा कूड़ सा संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोना कूड़ पार।

खत्री शब्द सुर शब्द शुद्ध शब्द का करता है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे हो नानता का दास है सो नंदन दियो महला दूजा एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवा आत्मा आत्मा।